0: अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पाने, बहुत दुख उठा ले हैं, जमन मरन बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़ के जन्म ना हो भी बोलो
1: सतनाम,
0: जमन मरन तो मुक्त कर दियो। ये सारे पुआड़े जमन मरन करके ही सब नो वड्डा दुख जमन ते मरन दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरन कट दे। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमन मरन कट देवेगा, वो तो खुद जमन मरन दे गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वो कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज ने झूठिया चीजा दे विच मेरा तां जन्म ये मौलिक जन्म निकल जाएगा, मैनू महाराज परमावो ना, मैनू ये झूठिया चीजा दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण ये गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देवेगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

रूप वेख्या मनुख दे विच अपना स्वरूप दिता मनुख नू ते 84 लाख जून दा बादशाह बना दिता। इस ऊपर तेरी शिकदारी अवर जून तेरी पनहारी ऐ मनुख सारिया जूना होर तेरी पानी भरन वालिया तेरी सेवा करन वालिया होनगिया पर वेखी मनुख होके मनुखा वाला काम करी ऐसा ना होवे तेरिया करतूतां पशु वालिया होन होवे तू मनुख ऐसा ना होवे निरंकार दे बख्शे होए अमोलक हीरियां लालां तो भी महंगे श्वास तू कौडियां दे वटे जाया कर दे मैं ऐसा ना होवे जिस वाहिगुरु ने तैनू अरोग कंचन वर्गा शरीर दिता तू उसनू सेवा सिमरन परपकार करन दी बजाए विकारा विच पापा विच ला के गाल देवे हजूर बख्शिश कर दियान भाई इस शरीर रूपी धरती दे उते मन नू हाली बना करनी नू किरसानी बना नाम दा बीज वो संतोख दा सुहागा रख जो वाहिगुरु ने दे दिता है सबर संतोख कर लख लख शुकर कर उसका जो कुछ वाहिगुरु ने दिता है अरदास कर हे निरंकार मैं इस योग नहीं जितना तू दे दिता है जितनिया रहमतां तू कीतियां हन जे करोड़ जन्म पाके भी तेरा शुकराना करा ता भी नहीं कर सकता। हजूर कहंदे ने इस शुभ कर्मा रूपी खेती विच बीज वो नाम दा ते फिर बड़ी प्रफुल्लत होवेगी ऐ मनुख फिर निम्रता दी वाड़ रखी किते भले कर्म करदिया होया तेरे मन विच हंकार ना आ जा जिस खेती नू वाड़ ना होवे उस खेती नू पशु जानवर उजाड़ जांदे हन किते तेरी भी शुभ कर्मा रूपी खेती उजड़ ना जावे इसलिए निम्रता विच रही सब कुछ करदिया होया भी निरंकार अगे अपने गुनाह बख्शावे अमृत वेले दे जागण दी दात मंगी नाम दी दात मंगी गुरु कोलो हर वेले ओदे निर्मल भाव विच रवी क्योंकि यही एक रुत है यही एक जून है जिदे विच तू जप

और कोई जून नहीं जिदे भई तू सिमरन सेवा परपकार कर सके। दुर्लभ देह पाई वडभागी, वड्या पागां करके तेनू प्राप्त हुई है। ते फिर इस विच नाम दा बीज बो, नाम दा वणज कर, क्योंकि तू वणजारा है नाम दा। तू संसार रूपी बाजार विच नाम दा वणज करन आया। ऐसा ना होवे तू अमोलक हीरे मोतियां ते लालां दा व्यापार करन आया होवे, ते टुटिया होया कच खरीद के अपने घर रख लवे। ता ओ कच दे घर विच रहन वाला मनुख कदे जख्मी होण तो बच नहीं सकदा। ए जो दुनिया दे पदार्थ हन, असी रात दिन भजदे हां उन्हां पदार्थां दे मगर, किवें मेरे कोल हो जान। हजूर कहंदे ने ए कच दी न्याई हन भाई, इन्हां पदार्थां विच रहन वाला सदा दुखी ही रहंदा है। कोई सुखी नहीं होया, सुखी तां परमेश्वर दे नाम जपण वाले हन। उन्हां नूं पुछ कितने उन्हां दे चेहरे खिड़े हन, कितने नूर हन उन्हां दे मस्तक ते जो जपदे हन श्री वाहिगुरु। इसलिए नाम बीज लो, क्योंकि पता नहीं फिर ए मनुच्छा

उनों युगों का धर्म है कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आ यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउणगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजिया ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए। सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ए ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तो अपनी राह तो चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखर

हे गुरु अर्जन देव पातशाह, मैं कदे कोई जान बुझ के ऐसा कम नहीं कीता, क्योंकि आप दा वचन है उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। आप दा वचन है जिथे सिमरन शास्त्र राज सिमरन करना, उथे अपना विहार भी शुद्ध करना, क्योंकि जिस मनुख दा विहार सच्चाई दे उपर है उस दा परमार्थ आपे ही शुद्ध हो जांदा है। जिदा विहार झूठा है वो जितना मर्जी है सिमरन कर लवे, वो सिमरन प्रफुल्लित नहीं होंदा। उच्चारण करो श्री हजूर कहंदे ने सत व्यवहार भी करना, जे तेरा विहार बिगड़ गया तो परमार्थ कदे नहीं सौर सकता। गरीब निवाज, मैं कदे जान बुझ के तो ऐसी गलती नहीं की, हुण मेरी पैज तू रखनी है। किसे दा कोई आसरा, किसे दा कोई आसरा, पर मेरा तो सबो कुछ तू ही है। जा अरदास करके पाई पतंग ने उस बलदे तेल विच हथ पाया, जाके पैसे कड ले आया, बानू कोई लाज तक नहीं लगी। उच्चारण करो श्री वाहे। हुण जमाल खान दी वारी आई, ओ भी करन लगा याद, पर बाह सड़ गई। जदों हथ पान लगा तां हथ जल गया, बाह की पानी सी। उसे वेले उसनू तां दवाई दे अधीन उदा इलाज करन वास्ते भेज दिता। ते इधर भाई पतंग जी मन विच बड़ा खोब है, भाई मेरी वजह करके किसे नू दुख पहुंचे, ये क्यों पहुंचे। हे वाहिगुरु, जे इदी अमानत मेरे पास है तो कृपा कर मैं इदा बोझ उतार सका। ते जां कोई गाक सौदा लैन लई आया ना, भाई फलानी चीज चाहीदी है, ते जो ओ कुजियां खोलन लगे ना, ओ सौदे नू लभन लगे, ते विचों भाई जमाल दी दित्ती होई ओ थैली लभ पई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई साहब नू भुल गया सी, चट थैली लैके 500 मोहरां हन, जमाल खान दे घर गए, भाई तेरी अमानत सानू मिल गई है, आ किते उरे परे रखी गई सी, गाक आया सौदा लभन लगे ते लभ गई, आ तेरी अमानत है लै लै। ते जमाल खान कहिंदा, मैं राज दरबार विचों भी हर चुकिया, उंज भी मैं झूठा पै चुकिया, हुण ए अमानत मैं नहीं लैनी। ते भाई साहब कहण लगे, मैनू गुरु दा हुक्म नहीं, मैं किसे दा भी पैसा अपने पास नहीं रख सकदा। हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर होमा तां भरे जां मुरदार ना खाए। ए मुरदार है किसे दी अमानत विच ख्यानत करके खाई जाना। अख्या मैनू ऐसे गुरु ने ए शब्द सिखाए नहीं हन, ए कम सिखाया नहीं। उच्चारण करो श्री। ता फिर मैं तेरे गुरु दे दीदार करना चाहना, ते ओदे कोलो कोई सवाल पूछना चाहना, जे ओ देवेगा तो मैं अपनी अमानत मोड़ लवांगा। भाई जमाल नू नाल लैके भाई पतंग जी गए, गुरु अर्जन देव पातशाह दीवान विच सशोभित हन, मत्था टेकिया, भाई पतंग दे नैन कटोरी भर आए, हजूर दे चरना तो मस्तक नहीं चुकदे। साहब जी ने दोवा हथा नाल, भाई पतंग तू गुरु नानक दे दर ते परवान होए, असी सब समझदे हां, तेरा कोई कसूर नहीं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई पतंग ते बेअंत बख्शिशां कीतियां, हुण जमाल खान ने भी हाथ जोड़े ते आख्या, महाराज मैं भी एक प्रश्न लैके आया, कि सच्चा मैं भी सां ते सच्चा ए भी सी, पर इस दा हाथ नहीं जलिया, मेरा हाथ जल गया, एदा की कारण है। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भई इसने मन करके कोई कसूर नहीं कीता, भुलण अंदर सब को जेड़ी अचिंते ही भुल हुंदी है ओ भुल नहीं होंदी, जेड़ी जान बुझ के कीती जाए ओ भुल गिनी जांदी है। फिर तू जदों इसने जदों अरदास कीती है, ता एक मन होके
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਆਖਿਆ ਪਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਬਈ, ਇੱਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਭਰਮ ਪਉ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਮਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਆ ਫੁੱਲ ਰੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਧਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमक मटकी कान फोरन। कहने कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी छिच इच्छन कदा मेद जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचों मगध दियां छिट्टां इंज बार आईया जिवें कि भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दिती होवे। मनो मटकी कान फोरन।

इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैन किसने मार दिते, मैदाने जंग अंदर लटा दिते। क्यों? प्रसंग रुदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रथिया सी, लोहे दी तरह लाल होया, जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र तारी।

मुदकर सौ साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुर कहते ने ये अपने आप नू बड़े सूरबीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरबीरां दे सामने इना दे पासो एक तीर भी ना चलिया, इथों तक के अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचो नठ गए।

सुंदरता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के गोपन के गोप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है पटियार। पटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावट ठाठ नाल, मारव ठाठ नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छत्ता, ते उस तो बाद इसे नु ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय विनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिग, मेरी अभय विनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच। आप जी श्रवण करो।

की अजद कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटाए अभिमान साध के संग पद घटाए सुज्ञान साध के संग बुझाए प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपज जतन साध की महिमा बने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी साध के संग अगोचर मिलाए साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सबकी देन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कथू तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस से नहीं बैर साध के संग न भीगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजाय सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग न कभू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लहे साधु कै संग अजर सह साध के संग बसाय थान ऊंचे साधु कै संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम नितान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उतारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु कै संग सोतन पावे जिस तन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा हुआ सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट ढीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा बेद न जाने जेता सुने ते तब ख्याने साध की उपमा तय गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूंचते मूंची।

भाई शाह भाई गुरदास जी, इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन है।

निम्रता धारण करने। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नूं गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नूं पवित्र रखना। एका नारी जती है पर नारी ती भैण वखाणे, वेख पराईयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। ऐसा गुरसिख का पवित्र जीवन है जो भाई साहब दस रहे हैं।

धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। तीसरा नियम पराई वस्तु पई है उसनू हाथ तक नहीं लाउना, किसे दी इमानत विच ख्यानत नहीं करनी। चौथा नियम ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम जो गुरु कहिंदा है उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नू रोशन करना, अपने जीवन नू टालना। हुण छेवा नियम भाई साहब दसदियां, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना, संसार नहीं त्यागना, ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहिंदे ने अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे, अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु, ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहिंदे हन के जिन्हां विच ए छियां छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणां विच वसना। आठ पहर प्रभु बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।